0: रजिस्टर्ड साइकोथेरेपिस्ट हैं और काउंसलर हैं जो पाकफा और एसीए से रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में दोहरी मास्टर डिग्री हासिल की है। वे भली भांति समझती हैं कि हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा पालन पोषण जो है वो हमारे व्यक्तित्व को और हमारी सोच को किस प्रकार आकार देते हैं। तो इसी के साथ वो पर्सन सेंटर्ड अप्रोच के साथ और होलिस्टिक अप्रोच के साथ लोगों की सहायता करती हैं। तो बाकी जानकारी हम कविता जी से ही लेंगे, तो चलिए मिलके पहले स्वागत करते हैं उनका। तो कविता जी, स्वागत है हमारा आज के हमारे इस प्यारे हिंदी कार्यक्रम प्रिया भारती में, आज के शो में हम स्वागत करते हैं आपका।
1: धन्यवाद नीलाश्री जी और श्रोतागण, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर अपने भाई बहनों के साथ मैं अपने थॉट्स शेयर कर पाऊँ। मेरी जर्नी भी कुछ ऐसी है कि मैं खुद यहाँ एक लेट माइग्रेंट मैं कह सकती हूँ अपने आप को, और इस जर्नी के दौरान मुझे लगा कि हमारे कल्चर में जिसको हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं, इस चीज़ को लेके बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अलग अलग विचार है लोगों के, और वो विचार कई बार हमें रोक देते हैं हेल्प सीख करने के लिए। हम बाहर आ नहीं पाते हैं क्योंकि दिमाग में ये चल रहा होता है कि क्या ये डिप्रेशन वगैरह कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, एंग्जाइटी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, और एक शर्म से उसे ज्वाइन कर देते हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं इस बारे में लोगों को इन्फॉर्म कर सकूँ कि हाँ, ये सच में इश्यूज होते हैं और इनको हमें एड्रेस करना चाहिए। शुक्रिया।
0: बहुत अच्छा कविता जी। तो हमारे श्रोतागण लेंगे आपसे अच्छी अच्छी जानकारी। तो सबसे पहले क्या ख्याल है आपका कि हम एक संगीत के साथ इस सफर की शुरुआत कर सकते हैं? तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गाना। और दोस्तों, हमारे साथ आज टेक्निकल सपोर्ट में जुड़े हैं शंपा जी, जो हमारे लिए अच्छे अच्छे गीत बजाएंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। आइए दोस्तों, सुनते हैं कविता जी की पसंद का गाना।
1: नीलाश्री जी, एक गाना है आप जैसा कोई, कुर्बानी पिक्चर का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऐसा कोई हेल्प करने वाला पहुंच जाए तो जिंदगी गुलजार हो जाती है।
0: बिल्कुल। तो आइए दोस्तों, लेते हैं गीत का आनंद, जिसका संगीत दिया है विदु जी ने और जिसके लिरिक्स दिए हैं श्याम लाल जी ने। आप जैसा कोई बहुत ही प्यारा गीत है,

नमस्कार दोस्तों, रेडियो एडलाइड 101.5 एफएम रिच एंड रियल पर आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे हिंदी कार्यक्रम प्रिय भारती में। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एक खास मेहमान कविता महाजन जी, जिनसे हम बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको परिचय देती हूँ कविता जी का। वो एक

0: तो आइए दोस्तों बातचीत का सफर जारी करते हैं। तो सबसे पहले हम कविता जी से जानना चाहेंगे कि जो माइग्रेंट जो हमारे भारतीय यहाँ पे आ जाते हैं, तो उस हिसाब से भारतीय संस्कृति और समुदाय के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य सहायता से उनका क्या तात्पर्य है?
1: देखिए, बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि जो हमारे भाई बहन इंडिया से आते हैं यहाँ पर, हमारा जो कल्चर है, इसको हम बोलते हैं, इसके लिए एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिविस्टिक कल्चर, और यहाँ भी जो ऑस्ट्रेलिया में कल्चर है उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर। ये कल्चर के जो नाम हैं एक पहचान के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे डिफरेंट रोल्स हैं। अब मैं यहाँ पर जो हूँ आपके सामने, एक माँ भी हूँ, एक बेटी भी हूँ, एक बहन भी हूँ, एक बहू भी हूँ, और अगर आप हर एक रोल को देखें तो हर एक रोल से एक स्ट्रेंथ आती है, एक एक्सपीरियंस आता है, और उसके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे भी आते हैं जो कि कई बार हमें सेल्फ डाउट में डालते हैं। हर एक जगह एक कहानी है। तो जब हम अप्रोच करते हैं किसी, जिसे हम यहाँ पे जो टर्म यूज़ होती है उसे हम कॉल्ड कम्युनिटी बोलते हैं, कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कम्युनिटी। तो जब हम डिफरेंट कम्युनिटी से आते हैं, हम वो अपना कल्चर लेके आते हैं, अपने सपने लेके आते हैं, और ये सपने हमें फॉर्म करते हैं हमारी थिंकिंग को, और यहीं पे डिफरेंस आता है मेरी अप्रोच का एक हिंदुस्तानी के लिए या उस भाई बहन के लिए जो कि कलेक्टिविस्टिक कल्चर से आए, क्योंकि मैं उन्हें देखती हूँ। इसके एक टर्म है बायोसाइकोसोशल कैनवस, कि वो इंसान कैसे सोचता है, उसके रिश्तों ने उसे कैसा मोल्ड किया है, उसकी मुश्किलें कैसी हैं, उन मुश्किलों की तरफ उसका नज़रिया कैसा है, जो कि बहुत डिफरेंट है एक इंसान के लिए जो कि इंडिविजुअली सोचता है, जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर से है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस आता है अप्रोच का। तो इस तरीके से अगर हम सोचें नीलाश्री जी, तो हर एक इंसान एक यूनिक इंडिविजुअल होता है, किसी की भी कहानी किसी दूसरे से सेम या सिमिलर भी नहीं होती। बिल्कुल, आप ये देखें कि कई बार हमारे, अब डिस्कोर्स जिसे हम कहते हैं कि नॉर्मली लोग बोलते हैं क्या हुआ, हमने भी तो किसी को खोया, अगर तुमने खोया तो हम ठीक हैं तो तुम भी हो जाओगे, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रिश्ता अलग होता है, एक्सपीरियंस अलग होते हैं, सोचने का ढंग अलग होता है। और इसीलिए कि जब भी मेरे सामने मेरा क्लाइंट आता है, तो वो क्लाइंट, मैं उसे यही बोलती हूँ कि तुम यूनिक हो, तुम्हारे एक्सपीरियंस यूनिक है, इसीलिए मेरी जो ट्रीटमेंट प्लान होगी, जिस तरीके से मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, जो ट्रेनिंग है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग होगी। ऐसा नहीं है कि मैं एक बैंडेड अप्रोच से चलूंगी कि जो तुम्हें दिया वो सामने वाले को भी दिया, क्योंकि हर एक इंसान अपने एक्सपीरियंसेस का कॉन्सिक्वेंस होता है, नतीजा होता है।
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है कविता जी, आप पर्सन सेंटर्ड अप्रोच के साथ चलते हैं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, इससे आप, मेरे को लगता है, उनकी अच्छे से सहायता भी कर पाते होंगे इस अप्रोच के साथ।
1: देखिए, मेरी अप्रोच जो है इसको हम, मैं कोलैबोरेटिव बोलती हूँ, मतलब मैं बोलती हूँ कि ये हम तो टीम है, आपका एक्सपीरियंस है वो आप उसके बॉस हैं, बस मुझे इतना, मुझ पर इतना विश्वास करें कि मैं आपके साथ चल सकूँ उस एक्सपीरियंस में, और अपनी एडवांस ट्रेनिंग से आपको सपोर्ट कर सकूँ।
0: बिल्कुल कविता जी, बहुत अच्छा। तो जैसे आपने बताया कि मैं बात करती हूँ, पर्सन सेंटर्ड अप्रोच के साथ आप चलते हैं, तो आप हमें ये बताएं कि जो हाल ही में भारत से माइग्रेंट्स जो आए हैं प्रवासी, उनकी क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं, किन चुनौतियों का वो सामना करते हैं, और क्या सहायता वो आपसे सीख करते हैं?
1: बिल्कुल, ये तो बहुत ही ज़रूरी सवाल है, क्योंकि हर एक इंसान डिफरेंट स्टेज में होता है यहाँ पे जब माइग्रेंट होते हैं। तो अच्छा आपने सवाल पूछा कि शुरुआत उनसे करते हैं कि जो अभी आए हैं, जिन्हें हम रीसेंट माइग्रेंट्स बोलते हैं। तो देखिए, कुछ सब लोग एक सपना लेके आते हैं हिंदुस्तान से कि वहाँ जाएंगे, बेहतर ज़िंदगी होगी, डेवलप्ड कंट्री है। सबसे पहला इशू तो आता है उन लोगों का वीज़ा का। अब वो एक ट्रांजिट वीज़ा से दूसरे ट्रांजिट वीज़ा में जा रहे होते हैं, तो सबसे, कई बार जब मेरे पास आते हैं और फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, तो ये सबसे पहला सवाल मुझसे पूछा जाता है कि क्या ये मेरे वीज़ा पे असर करेगा अगर मैं आपके पास सहायता लेने आऊं? क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि स्ट्रेस इतना है, रिलेट करना है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, हिंदुस्तान में कितनी अपनी मुश्किलें बता सकते हैं, सपने भी टूट रहे हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक हमारा प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होता है, जिसके अंतर्गत मैं क्लाइंट से पहले सेशन के ड्यूरिंग ही बोलती हूँ कि जो हम बात यहाँ पे करेंगे वो यहीं पर ही रहेगी। आपके ऊपर है कि आप जाके बात किसी से डिस्कस करें, मुझसे ये बात बाहर नहीं जाएगी। और हो सकता है, क्योंकि हम सेम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, इसलिए इतना बड़ा भी नहीं है, अगर आप कल को कहीं मार्केट प्लेस पर मुझे देख लेते हैं तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप आके मुझे हेलो बोलें या मुझसे इंटरेक्ट करें, क्योंकि वो, दैट इज़, वो आपका प्रेरोगेटिव है। मेरी तरफ से आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप आएँ और बोलें कि नहीं, ये मेरी थेरेपिस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है।
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है कविता जी. अगर आप कहते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी फुल होती है, तो मेरे को लगता है कि क्योंकि आजकल हर इंसान इस समस्या से जूझ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जब लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहायता लेंगे और अपनी अपने स्वास्थ्य को ठीक करेंगे. तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और बात करेंगे बाद में, पर बीच में एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक और गाना सुन लेते हैं. आप ही की पसंद का गाना बजाएंगे.
1: धन्यवाद नीलाश्री जी, क्योंकि बात रिश्तों की हो रही है और रिश्तों की पहचान की हो रही है, तो एक गाना है तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूसरे के लिए फिल्म से.
0: बहुत अच्छा गाना चुना है कविता जी आपने, जिसे गाया है लता मंगेशकर जी ने और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने. बहुत ही प्यारा गीत है, तो दोस्तों आइए लेते हैं गीत का आनंद.